मन दी पूजा कर लगा विश्व हेला था रंग रंग बोल लगा मंदरा बेरु मन दी पूजा कर लगा विश्व हेला था रंग रंग बोल लगा।